क्यों ये मेरा शोर करे? ऐ मगे आदवत हो रकांग करे? इधर नहीं उधर नहीं, इतना में इतना तेरी ओर चले। मगे आदवत हो यात्र के अन्न की।

इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले कहते हैं मैं इतने हो बत के अन्न घी अही मगे ही तोर का कले केला मंदा मत तो या कहेगा ना आरी हदीस की इडियट ही मुकदमे होने ऐ ये मेरे तब पहलू ने ऐ मामा हो रखा कले

सुबह मंदारम राग वेवा तरंगा का मैं सब पहाने लिया तेरे व्याग ऐस देख मट पे यन कटे मुलु लोग के मन निवीगी शांति किन वागे वहुना अत अलगे न पांच साल वाटे रह गया ए रह अधिराती ते लासन में मत गया क पहान कोड़ वाले पाट वाले ट वड़ा व्याग ही नव मागे ही तालो के मत कला वैसा खाने आटा निहाने व प्रार्थना कले एक देख वितराई मैं आदरे का उदावत मैं करने पाकिया ला ऐता वासना वक्तारम अधटे वासर विसि पाक क्यों नवा बंदे हु एक तरह आदरे का तावकटा ले रंगना

अभी लाइव के शेयर कर ले वेडी में शेयर प्रमाण है दीपू आसना उन जायग्राह क्या हो जायग्राह का अब हरिये टम ताऊ विनाडी हाथकीन तोरा करने वा ये माय के लिए ताऊ तारंगी वरने आठ बुलन ताऊ ताऊ अच्छे आकर ना भी बालमु तीरने को हम बैठ के ला मेरे दी डिस्ट्रिक्ट का देखा मैं खारा टकारा साटना

0: राइट ओके कमेंट सेक्शन ने का मेवेदी दुरुस्त है सीमा बहु कर लती है ना वाट वासनावंत जैक ड्रा केक पेन नो ना लाइव एक गैम्मट शेयर करना
1: नेट एफएम डीजे नाइट फेस टू फेस अटैक शो पावर्ड बाय बीएस कर्टन हाउस पुद्गलिका समागम एलियागुडा